0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, सोफिया जमशेद और वसीमा आबिद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। जी सामईन, आज हमने जापान के मौसम गर्मा के मेलों यानी नत्सु मत्सुरी से हमारी महफिल को शुरू करना था, लेकिन मंगल को जनूबी जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर और उसके आसपास आए जलजले के बायस आज का प्रोग्राम जलजला जदगान के जिक्र से शुरू करेंगे।
2: जी, बहुत शदीद जलजला था जिसका मैग्नीट्यूड 7.1 था।
1: इस जलजले के नतीजे में कई अफराद हलाक और जख्मी भी हो गए हैं।
2: इस कुदरती आफत में हलाक होने वालों के लिए दुआगो हैं, खुदा उनके लवाहिकीन को सब्र दे और जख्मी होने वालों को अल्लाह पाक जल्द अज जल्द सेहतियाब करे।
0: आमीन। खलील साहब, वहाँ रहने वाले पाको हिंद के रहायशियों के बारे में कुछ मालूमात होंगी आपके पास?
1: जी, मुझे पता था कि आप ये ज़रूर पूछेंगी, इसलिए मैंने 30 जुलाई को वहाँ मुकीम कुछ पाकिस्तानियों से बातचीत की है, सुनना चाहेंगे?
2: जी जी ज़रूर, हम दोनों बल्कि सामईन भी सुनना चाहेंगे,
1: तो सुनिए। आप मेरे ख्याल में आप जब जलजला आया उस वक्त कुमामोतो शहर में मौजूद थे, तो कुछ जी अपने तजुर्बात, अपने एहसासात हमारे साथ शेयर कीजिए। जब जलजला आया उस वक्त आप कहाँ थे और आपने क्या देखा, क्या महसूस किया?
3: मैं जॉब से फ्री होके घर में आया था, सोफे पे बैठा था, वाइफ के साथ खाना खाने लगा था, तो एकदम बहुत ज्यादा इसके शॉक के साथ ना घर शेक करने लग गया था। बिल्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेकिंग में चली गई थी, तो हमें साथ हुआ कि ये जलजला है। पहले तो हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था वेव्स की वजह से,
1: अच्छा,
3: चेकिंग की वजह से। फिर किसी तरह हिम्मत करके हम बाहर निकले हैं, दरवाजा खोला है तो बाहर देखा बिल्डिंग बहुत जोर जोर से ना हिल रही थी।
1: अच्छा,
3: तो हिल रही थी तो हम भाग गए नीचे, मैं और वाइफ थे नीचे, जाके हम 5-10 मिनट वहां खुद को हौसला किया, हमें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि शॉक की स्टेट थी।
1: अच्छा,
3: तो साथ हमारे जो रेजिडेंट्स रहते हैं, क्योंकि ये सारी हाउसिंग बिल्डिंग्स है ना जहाँ हम रहते हैं,
1: ठीक,
3: तो सारे रेजिडेंट जो आसपास रहने वाले हैं वो भी उसको बाहर निकल आए थे।
1: अच्छा,
3: तो बाहर निकलने के बाद सब लोग 10-15 मिनट बाहर रहे थे। उसके बाद जब 10-15 मिनट खुद को रिलैक्स करके मैं और वाइफ ऊपर कमरे में, सारा सामान गिरा पड़ा था, एक फैन था हमारा वो नीचे गिर के टूट गया था, ड्रेसिंग टेबल नीचे गिर गया था, फ्रिज खुल कर उसके अंदर से सामान बाहर गिर गया था।
1: अच्छा,
3: और जो कबर्ड होते हैं जिनके अंदर हम पाकिस्तानी आपको पता है आमतौर पर मसाले रखते हैं या कपड़े वगैरह रखते हैं, वो खुल के वो सामान नीचे गिर गया हुआ था।
1: अच्छा,
3: तो काफी डैमेज यानी घर अंदर डैमेज हो गया था ना।
1: अच्छा,
3: तो फिर वो बस उसको संभाला थोड़ा, आसपास जो जाने वाले पाकिस्तानी दोस्त वगैरह रहते हैं,
1: अच्छा,
3: जापानी दोस्त रहते हैं, उनको कॉल की, तो पाकिस्तानी जितने भी थे उन सबकी घर की कंडीशन ऐसी थी कि सब सामान गिर के उनका ना टूट चुका है ना काफियों का।
1: अच्छा,
3: और उसके बस 10 मिनट बाद एम्बुलेंस के सायरन, फायर ब्रिगेड के सायरन, पुलिस के सायरन, बस ऐसे जैसे वो हम नफ्सा नफ्सी का आलम कहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा शोर शराबा ये वो सब कुछ जो है ना वो सुनने वो आवाजें आ रही थी फिर हमें।
1: अच्छा
3: जी जी,
1: तो जब जलजला झटके जारी थे उसी वक्त आप नीचे उतरे आप सीढ़ियों से, तो इसमें गिरने का खतरा नहीं हुआ?
3: जी जी, गिरने का बहुत खतरा हुआ, उतरा ही नहीं जा रहा, हम बैठ बैठ के तकरीबन सीढ़ियां उतरे हैं ना।
1: अच्छा
3: जी जी, शौक इतना ज्यादा था कि वो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो बैठ के जितना वो बच्चे नहीं रिंग थे दो पकड़ पकड़ के सीढ़ियों का स्टैंड जो होता है लेफ्ट साइड में फेंस,
1: सही,
3: उसको पकड़ पकड़ के किसी तरह नीचे उतरे थे। बस वो कंडीशन ऐसी थी कि समझ नहीं आ रहा था, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से किसी तरह ना पहुंच गए नीचे खुले ग्राउंड में ना।
1: तो फिर आप वहां से निकल के दोबारा घर के अंदर नहीं गए, कहीं निकल गए? कहीं
3: निकल गए, हम वापस आए थे जलजले के बाद जब फ्रिज वगैरह का सामान रिकवर किया है ना,
1: ठीक,
3: तो उसके बाद ना हम चले गए थे एक इवैक्यूएशन शेल्टर के पास, फिर हम 3-4 घंटे वहीं रहे थे, उसके बाद वापस नहीं आए क्योंकि आफ्टर शॉक आ रहे थे।
1: अच्छा,
3: तो फिर हम शाम को 4:30 पे जलजला आया, तो फिर वापस हम 7:30 आए थे दोबारा।
1: और इवैक्यूएशन सेंटर में क्या सूरत हाल थी?
3: इवैक्यूएशन सेंटर में काफी लोग जमा थे, खासतौर पे इवैक्यूएशन सेंटर में जाते जाते बहुत टाइम लग गया था, कॉम्बिनी

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 3 अगस्त सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान के वित्त मंत्री का कहना है कि मंत्रालय ने अमरीकी वित्त मंत्रालय के समन्वय से पिछले सप्ताह जापानी येन खरीदने के लिए मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया। माना जा रहा है कि इस संयुक्त हस्तक्षेप के कारण ही पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में डॉलर के मुकाबले जापानी मुद्रा में 5 येन की तीव्र वृद्धि हुई। इस उछाल ने येन को लगभग 2.5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। गौरतलब है कि येन 40 वर्षों के न्यूनतम स्तर के करीब पहुंच गया था। वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी ने सोमवार को एक वक्तव्य जारी कर संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की। बाद में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि ये कार्रवाई पिछले साल सितंबर में जापान और अमेरिका के वित्त मंत्रियों के संयुक्त बयान के अनुरूप थी। कातायामा ने कहा कि जापान का वित्त मंत्रालय मौजूदा स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है और अमरीकी वित्त मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है। भविष्य में समन्वित हस्तक्षेप करने में हमें कोई संकोच नहीं होगा। कातायामा ने आगे कहा कि भविष्य में जापान अपने अमरीकी बंधपत्रों को गिरवी रखकर हस्तक्षेप के लिए आवश्यक डॉलर उधार लेने हेतु फेडरल रिजर्व की सुविधा का उपयोग करने की योजना बना रहा है। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका मंत्रालय आगे किसी भी संयुक्त हस्तक्षेप में भाग लेने से नहीं हिचकिचाएगा। बेसेंट ने कहा कि येन के भारी अवमूल्यन को ठीक करने के लिए जापान द्वारा बाजार में अपनाए गए ठोस मौद्रिक उपायों का अमरीकी वित्त मंत्रालय दृढ़ता से समर्थन करता है। 2011 के बाद ये जापान और अमरीका का पहला संयुक्त मुद्रा हस्तक्षेप था। उस समय पूर्वोत्तर जापान में आए महाभूकंप और सुनामी के बाद येन के मूल्य में उछाल आने के चलते अधिकारियों ने येन को बेच दिया था। हालांकि 1998 के बाद येन को सहारा देने के लिए ये पहला संयुक्त हस्तक्षेप है जब जापान के कुछ बैंक डूब गए थे। जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो में सोमवार को पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह इस क्षेत्र में 7.1 की तीव्रता का भूकंप आया था। कुमामोतो शहर में दोपहर 2:24 पर अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार कुमामोतो प्रीफेक्चर में इससे पहले का उच्चतम तापमान 39.6 डिग्री था, जो अगस्त 2013 में दर्ज किया गया था। एजेंसी लोगों से तापघात से बचाव के लिए सावधानी बरतने का आग्रह कर रही है, जिसमें घर के बाहर साफ सफाई करने से बचना और दिन के दौरान ठंडी जगह पर रहना शामिल है। भूकंपीय गतिविधि में वृद्धि के बीच मौसम विज्ञान एजेंसी लोगों से मंगलवार तक जापान के भूकंप मापी पैमाने पर 7 तक की तीव्रता वाले भूकंपों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह कर रही है। कुमामोतो के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि भूकंप के बाद से सोमवार सुबह 7:30 बजे तक प्रीफेक्चर में आपदा से संबंधित 38 मौतें हो चुकी थीं। 4,600 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 181 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। प्रीफेक्चर में 8,500 से अधिक लोगों को आपात आश्रयों में स्थानांतरित किया गया है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक बड़ा हमला करने की योजना रद्द करने की घोषणा की है, जिसके बावजूद ईरान का कड़ा रुख बरकरार है। खबरों के मुताबिक ट्रंप सप्ताहांत में एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब उनका कहना है कि वे कुछ शर्तों के साथ इसे रद्द करने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान और पश्चिम एशिया के अन्य देशों ने अमेरिका से अनुरोध किया कि वो हमला रद्द कर दे, क्योंकि समझौते के खाके पर सहमति हो गई है। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तुरंत और पूरी तरह से खोलने तथा ईरान की ओर से उत्पन्न परमाणु खतरे को समाप्त करने की शर्त रखी गई है। ट्रंप ने लिखा कि अनुरोध के आधार पर वे जल्द से जल्द समझौता होने की स्थिति में हमला रद्द करने पर सहमत हुए। ईरान के सरकारी मीडिया ने रविवार को ईरान के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के हवाले से कहा कि दुश्मन के हालिया बयान भले ही मनोवैज्ञानिक दांव पेच हैं, लेकिन ईरान उन्हें वास्तविक और गंभीर खतरा मानता है। अधिकारी ने कथित तौर पर यह भी कहा कि ईरान लापरवाही नहीं बरतेगा और न ही चुपचाप बैठा रहेगा, बल्कि वो अपनी सैन्य तत्परता बढ़ाते हुए प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करेगा। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पूर्वोत्तरी जलक्षेत्र में एक नौका में आग लगने की खबर है। इंडोनेशिया की खोज एवं बचाव एजेंसी के अनुसार रविवार शाम 4 बजे तक 5 लोगों की मौत हो चुकी थी और 41 अन्य लापता थे। एजेंसी का कहना है कि आग रविवार को उस समय लगी जब ये नौका पूर्वी जावा प्रांत के मादुरा द्वीप के निकट से गुजर रही थी। एजेंसी के अनुसार ये नौका पूर्वी जावा के सुराबाया से साउथ सुलावेसी प्रांत के मकासर जा रही थी और उस पर 271 लोग सवार थे। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। जापान के सुप्रसिद्ध ग्रीष्मकालीन उत्सवों में से एक नेबुता महोत्सव की शुरुआत हो गई है। नेबुता महोत्सव में जापान के उत्तरी शहर आओमोरी में भव्य झांकियों की परेड निकाली जाती है। इस महोत्सव में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख दर्शक आते हैं। इसका मुख्य आकर्षण नेबुता नामक विशाल झांकियां हैं। इनमें ऐतिहासिक योद्धाओं, पौराणिक पात्रों और अन्य विषयों को दर्शाया जाता है। इस वर्ष के उत्सव के पहले दिन रविवार शाम 7 बजे 16 झांकियों ने परेड शुरू की, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई लगभग 5 मीटर थी। ये झांकियां ढोल और बांसुरी की धुन पर करीब 3 किलोमीटर तक चलीं। उत्साही नर्तकों की भीड़ ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। 40 वर्ष से अधिक आयु की एक महिला ने कहा कि वो पहली बार इस उत्सव को देखकर बेहद उत्साहित है। उसने कहा कि उसने झांकियों के निर्माण में नेबुता शिल्पकारों द्वारा किए गए साल भर के प्रयासों में निहित उत्साह को महसूस किया। ये उत्सव शुक्रवार तक चलेगा। अंतिम दिन दर्शक आतिशबाजी और समुद्री झांकियों का जुलूस एक साथ देख सकते हैं।
0: इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानता है।
1: कैट कैफे ऐसी दुकानें होती हैं जहां आप चाय या कॉफी का आनंद लेते हुए बिल्लियों के साथ खेल सकते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 23वें पाठ की बातचीत।
2: みんなご飯を食べています。
3: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
2: 私はこの猫が好きです。
4: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले ताम ने बिल्लियों को देखते हुए कहा,
2: कवाई,
0: कितनी प्यारी हैं।
2: मीना गोहान ओ तबेते इमासु,
0: सब खाना खा रही हैं।
1: फिर आयाका बोली,
3: होंतो नी कवाई ने,
0: सचमुच प्यारी हैं।
1: उसके बाद आयाका ने बिल्लियों को आवाज लगाई,
3: ओइदे ओइदे,
0: इधर आओ इधर आओ।
1: आयाका ने अपने पास आई बिल्ली को पुचकारते हुए कहा,
3: वाताशी वा कोनो को गा सुकी,
0: मुझे ये वाली पसंद है।
1: फिर ताम ने दूसरी बिल्ली को सहलाते हुए कहा,
2: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देसु,
0: मुझे ये बिल्ली पसंद है।
1: माइक भी माहौल का आनंद ले रहा था। वो बोला,
4: नेको कैफे ते रिलैक्स देकिरियो ने,
1: कैट कैफे आकर बहुत सुकून मिलता है ना।
0: तब ताम ने जवाब दिया,
2: होंतो देसु ने,
0: सही कहा।
1: कैट कैफे में आमतौर पर अलग अलग तरह की बिल्लियां होती हैं। आप भी उनमें से अपनी मनपसंद बिल्ली के साथ खेल सकते हैं।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
2: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देसु,
0: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। ये वाक्य याद करके आप अपनी पसंद बता सकेंगे।
1: इस वाक्य में
5: वाताशी
1: का अर्थ है मैं, और उसके बाद लगा है वा, जो विषय सूचक कारक है। उसके बाद आया है
5: नेको,
1: यानी बिल्ली।
5: कोनो नेको
1: का अर्थ है ये बिल्ली।
0: आगे है
5: स्की देस,
0: जिसमें से
5: स्की
0: एक ना विशेषण है और उसका मतलब है पसंद।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीज पसंद हो उसके नाम के बाद कारक गा लगाते हैं और उसके बाद बोलते हैं
5: स्की देसु।
1: अगर आपको बिल्लियां यानी
5: नेको
1: पसंद हैं तो वाक्य बनेगा
5: नेको गा स्की देसु।
0: ध्यान रखिएगा कि नेको ओ स्की देसु बोलना सही नहीं है।
5: स्की देसु
0: का
5: स्की
0: यानी पसंद क्रिया नहीं है, ना विशेषण है। विशेषण जिस चीज की विशेषता बताता है उसके नाम के बाद कारक ओ नहीं गा लगाया जाता है।
1: अगर हम आयाका की पंक्ति पर ध्यान दें तो उसने भी कहा था वाताशी वा कोनो को गा सुकी, जिसका अर्थ है मुझे ये वाली पसंद है।
0: करीबी मित्र से बात करते समय आप अंत का
5: देस
0: छोड़ सकते हैं और
5: स्की देस
0: की जगह सिर्फ
5: स्की
0: बोल सकते हैं।
1: एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ताम और आयाका दोनों ने अपने वाक्य में वाताशी वा यानी मैं लगाया, लेकिन हम आपको पिछले पाठों में बता चुके हैं कि अगर संदर्भ स्पष्ट हो तो ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं होती है।
0: यहाँ ताम और आयाका अपनी अपनी पसंद बता रही हैं और इस बात पर जोर दे रही हैं कि उनकी पसंद एक दूसरे से अलग है। जैसे ताम ने कहा,
5: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देसु,
0: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। यहाँ उसने खास तौर से कहा
5: वाताशी वा।
1: तो अब उच्चारण का अभ्यास करते हैं, सुनिए और दोहराइए।
5: स्की देसु, कोनो नेको गा स्की देसु, वाताशी वा कोनो नेको गा स्की देसु।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें मनपसंद खाने की चीज की बात हो रही है।
6: 食べ物は何が好きですか？
7: 寿司が好きです。
1: इस बातचीत में पहले पुरुष ने पूछा,
6: 食べ物は何が好きですか？
1: खाने में क्या पसंद है?
0: यहाँ
5: 食べ物
0: का अर्थ है

0: खाना या खाने की चीज। उसके बाद लगा है विषय सूचक कारक वा।
1: नानी
0: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है क्या। तो
1: नानी गा स्की डेस्क का
0: अर्थ है क्या पसंद है।
2: महिला ने उत्तर दिया
3: सुशी गा स्की डेस्क।
0: सुशी पसंद है।
2: सुशी एक जापानी व्यंजन है जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है।
0: तो अब ये बातचीत दोबारा सुनिए और उत्तर दोहराइए।
1: तबेमोनो वा नानी गा स्की डेस्क का सुशी गा स्की डेस्क।
2: अब वाक्य बनाने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आपको लोकप्रिय जापानी संगीत यानी जे पॉप पसंद है, तो ये बात कैसे बताएंगे। जे पॉप को जापानी में कहते हैं
1: जे पॉप।
2: तो कोशिश कीजिए।
3: जे पॉप गा स्की डेस्।
0: अब मान लीजिए आपको जापानी चित्र कथाएं पसंद हैं, जिन्हें जापानी भाषा में कहते हैं
1: मांगा।
0: तो अपनी पसंद बताने की कोशिश कीजिए।
4: मांगा गा स्की डेस्।
2: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
3: होंतो देस ने।
1: होंतो
0: है
1: होंतो,
0: यानी सही कहा का लघु रूप।
1: होंतो देस ने
0: का भी मतलब है सही कहा। इस वाक्य का इस्तेमाल किसी के विचार या राय पर सहमति दिखाने के लिए किया जाता है।
2: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
1: होंतो देस ने।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
3: कवाई मिन्ना गोहान ओ तबेते इमासु। 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
5: バイクと一緒にポップカルチャー。
2: अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बताएंगे जापान में तरह तरह के दिलचस्प कैफे के बारे में।
0: जापान में ऐसे बहुत सारे कैफे बन गए हैं जहां केवल खाना पीना ही मुख्य आकर्षण नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण है कैट कैफे, जिसका आज के पाठ में जिक्र है।
2: जिन लोगों को उल्लू या खरगोश पसंद हैं, वे उल्लू या खरगोश कैफे में जा सकते हैं। आपकी जापानी भाषा बहुत अच्छी ना भी हो तो भी आप ऐसी जगह नए दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि वहां आए सारे ग्राहकों की रुचि एक जैसी होती है।
0: मेड कैफे थोड़े अलग होते हैं। वहां खाना परोसने वाली लड़कियां फ्रेंच मेड जैसे कपड़े पहनती हैं और ग्राहकों को मालिक कहकर संबोधित करती हैं।
2: इसके अलावा जापान में आशी यू कैफे भी हैं, जहां आप गर्म पानी में पैर डालकर बैठ सकते हैं। प्लैनेटेरियम यानी तारामंडल कैफे भी हैं, जहां आप चाय पीते हुए सितारों की दुनिया में खो सकते हैं।
0: इसके अलावा एनीमे और गेम्स पर आधारित कैफे तो हैं ही।
2: तो आप भी जापान में अपना मनपसंद कैफे जरूर ढूंढिएगा।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
2: अगले पाठ में अपनी नापसंद बताना सीखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट NHK

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 3 अगस्त सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान के वित्त मंत्री का कहना है कि मंत्रालय ने अमरीकी वित्त मंत्रालय के समन्वय से पिछले सप्ताह जापानी येन खरीदने के लिए मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया। माना जा रहा है कि इस संयुक्त हस्तक्षेप के कारण ही पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में डॉलर के मुकाबले जापानी मुद्रा में 5 येन की तीव्र वृद्धि हुई। इस उछाल ने येन को लगभग 2.5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। गौरतलब है कि येन 40 वर्षों के न्यूनतम स्तर के करीब पहुंच गया था। वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी ने सोमवार को एक वक्तव्य जारी कर संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की। बाद में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि ये कार्रवाई पिछले साल सितंबर में जापान और अमेरिका के वित्त मंत्रियों के संयुक्त बयान के अनुरूप थी। कातायामा ने कहा कि जापान का वित्त मंत्रालय मौजूदा स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है और अमरीकी वित्त मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है। भविष्य में समन्वित हस्तक्षेप करने में हमें कोई संकोच नहीं होगा। कातायामा ने आगे कहा कि भविष्य में जापान अपने अमरीकी बंधपत्रों को गिरवी रखकर हस्तक्षेप के लिए आवश्यक डॉलर उधार लेने हेतु फेडरल रिजर्व की सुविधा का उपयोग करने की योजना बना रहा है। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका मंत्रालय आगे किसी भी संयुक्त हस्तक्षेप में भाग लेने से नहीं हिचकिचाएगा। बेसेंट ने कहा कि येन के भारी अवमूल्यन को ठीक करने के लिए जापान द्वारा बाजार में अपनाए गए ठोस मौद्रिक उपायों का अमरीकी वित्त मंत्रालय दृढ़ता से समर्थन करता है। 2011 के बाद ये जापान और अमरीका का पहला संयुक्त मुद्रा हस्तक्षेप था। उस समय पूर्वोत्तर जापान में आए महाभूकंप और सुनामी के बाद येन के मूल्य में उछाल आने के चलते अधिकारियों ने येन को बेच दिया था। हालांकि 1998 के बाद येन को सहारा देने के लिए ये पहला संयुक्त हस्तक्षेप है जब जापान के कुछ बैंक डूब गए थे। जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो में सोमवार को पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह इस क्षेत्र में 7.1 की तीव्रता का भूकंप आया था। कुमामोतो शहर में दोपहर 2:24 पर अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार कुमामोतो प्रीफेक्चर में इससे पहले का उच्चतम तापमान 39.6 डिग्री था, जो अगस्त 2013 में दर्ज किया गया था। एजेंसी लोगों से तापघात से बचाव के लिए सावधानी बरतने का आग्रह कर रही है, जिसमें घर के बाहर साफ सफाई करने से बचना और दिन के दौरान ठंडी जगह पर रहना शामिल है। भूकंपीय गतिविधि में वृद्धि के बीच मौसम विज्ञान एजेंसी लोगों से मंगलवार तक जापान के भूकंप मापी पैमाने पर 7 तक की तीव्रता वाले भूकंपों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह कर रही है। कुमामोतो के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि भूकंप के बाद से सोमवार सुबह 7:30 बजे तक प्रीफेक्चर में आपदा से संबंधित 38 मौतें हो चुकी थीं। 4,600 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 181 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। प्रीफेक्चर में 8,500 से अधिक लोगों को आपात आश्रयों में स्थानांतरित किया गया है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक बड़ा हमला करने की योजना रद्द करने की घोषणा की है, जिसके बावजूद ईरान का कड़ा रुख बरकरार है। खबरों के मुताबिक ट्रंप सप्ताहांत में एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब उनका कहना है कि वे कुछ शर्तों के साथ इसे रद्द करने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान और पश्चिम एशिया के अन्य देशों ने अमेरिका

0: से अनुरोध किया कि वो हमला रद्द कर दे क्योंकि समझौते के खाके पर सहमति हो गई है। समझौते में होर्मुज़ जलडमरु मध्य को तुरंत और पूरी तरह से खोलने तथा ईरान की ओर से उत्पन्न परमाणु खतरे को समाप्त करने की शर्त रखी गई है। ट्रंप ने लिखा कि अनुरोध के आधार पर वे जल्द से जल्द समझौता होने की स्थिति में हमला रद्द करने पर सहमत हुए। ईरान के सरकारी मीडिया ने रविवार को ईरान के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के हवाले से कहा कि दुश्मन के हालिया बयान भले ही मनोवैज्ञानिक दांवपेच हैं, लेकिन ईरान उन्हें वास्तविक और गंभीर खतरा मानता है। अधिकारी ने कथित तौर पर यह भी कहा कि ईरान लापरवाही नहीं बरतेगा और न ही चुपचाप बैठा रहेगा, बल्कि वो अपनी सैन्य तत्परता बढ़ाते हुए प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करेगा। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पूर्वोत्तरी जलक्षेत्र में एक नौका में आग लगने की खबर है। इंडोनेशिया की खोज एवं बचाव एजेंसी के अनुसार रविवार शाम 4 बजे तक 5 लोगों की मौत हो चुकी थी और 41 अन्य लापता थे। एजेंसी का कहना है कि आग रविवार को उस समय लगी जब ये नौका पूर्वी जावा प्रांत के मादुरा द्वीप के निकट से गुजर रही थी। एजेंसी के अनुसार ये नौका पूर्वी जावा के सुराबाया से साउथ सुलावेसी प्रांत के मकासर जा रही थी और उस पर 271 लोग सवार थे। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। जापान के सुप्रसिद्ध ग्रीष्मकालीन उत्सवों में से एक नेबुता महोत्सव की शुरुआत हो गई है। नेबुता महोत्सव में जापान के उत्तरी शहर आओमोरी में भव्य झांकियों की परेड निकाली जाती है। इस महोत्सव में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख दर्शक आते हैं। इसका मुख्य आकर्षण नेबुता नामक विशाल झांकियां हैं। इनमें ऐतिहासिक योद्धाओं, पौराणिक पात्रों और अन्य विषयों को दर्शाया जाता है। इस वर्ष के उत्सव के पहले दिन रविवार शाम 7 बजे 16 झांकियों ने परेड शुरू की, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई लगभग 5 मीटर थी। ये झांकियां ढोल और बांसुरी की धुन पर करीब 3 किलोमीटर तक चलीं। उत्साही नर्तकों की भीड़ ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। 40 वर्ष से अधिक आयु की एक महिला ने कहा कि वो पहली बार इस उत्सव को देखकर बेहद उत्साहित है। उसने कहा कि उसने झांकियों के निर्माण में नेबुता शिल्पकारों द्वारा किए गए साल भर के प्रयासों में निहित उत्साह को महसूस किया। ये उत्सव शुक्रवार तक चलेगा। अंतिम दिन दर्शक आतिशबाजी और समुद्री झांकियों का जुलूस एक साथ देख सकते हैं। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 23वें पाठ में अपनी पसंद बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो होक्काइडो घूमकर टोक्यो वापस आ चुकी है। टोक्यो में वो अपने दोस्तों आयाका और माइक के साथ एक कैट कैफे में आई है। माइक अमरीकी है और जापान की पॉप

0: के साथ सुनते हैं। पहले ताम ने बिल्लियों को देखते हुए कहा,
1: कवाई,
2: कितनी प्यारी है।
1: मीना गोहान ओ तबेते इमास,
2: सब खाना खा रही हैं।
0: फिर आया का बोली,
1: होंतो नी कवाई ने,
2: सचमुच प्यारी हैं।
0: उसके बाद आयाका ने बिल्लियों को आवाज लगाई,
1: ओइदे ओइदे,
2: इधर आओ इधर आओ।
0: आयाका ने अपने पास आई बिल्ली को पुचकारते हुए कहा,
1: वाताशी वा कोनो को गा सुकी,
2: मुझे ये वाली पसंद है।
0: फिर ताम ने दूसरी बिल्ली को सहलाते हुए कहा,
1: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देस,
2: मुझे ये बिल्ली पसंद है।
0: माइक भी माहौल का आनंद ले रहा था। वो बोला,
3: नेको काफे ते रिलैक्स देखी रियो ने,
0: कैट कैफे आकर बहुत सुकून मिलता है ना।
2: तब ताम ने जवाब दिया,
1: होंतो देस ने,
2: सही कहा।
0: कैट कैफे में आमतौर पर अलग अलग तरह की बिल्लियां होती हैं। आप भी उनमें से अपनी मनपसंद बिल्ली के साथ खेल सकते हैं।
2: आज का मुख्य वाक्य है,
1: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देस,
2: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। ये वाक्य याद करके आप अपनी पसंद बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
4: वाताशी
0: का अर्थ है मैं, और उसके बाद लगा है वा, जो विषय सूचक कारक है। उसके बाद आया है
4: नेको,
0: यानी बिल्ली।
4: कोनो नेको
0: का अर्थ है ये बिल्ली।
2: आगे है
4: सुकी देस,
2: जिसमें से
4: सुकी
2: एक ना विशेषण है और उसका मतलब है पसंद।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीज पसंद हो उसके नाम के बाद कारक गा लगाते हैं और उसके बाद बोलते हैं
4: सुकी देस।
0: अगर आपको बिल्लियां यानी
4: नेको
0: पसंद हैं तो वाक्य बनेगा
4: नेको गा सुकी देस।
2: ध्यान रखिएगा कि नेको ओ सुकी देस बोलना सही नहीं है।
4: सुकी देस
2: का
4: सुकी
2: यानी पसंद क्रिया नहीं है, ना विशेषण है। विशेषण जिस चीज की विशेषता बताता है उसके नाम के बाद कारक ओ नहीं गा लगाया जाता है।
0: अगर हम आयाका की पंक्ति पर ध्यान दें तो उसने भी कहा था वाताशी वा कोनो को गा सुकी, जिसका अर्थ है मुझे ये वाली पसंद है।
2: करीबी मित्र से बात करते समय आप अंत का
4: देस
2: छोड़ सकते हैं और
4: सुकी देस
2: की जगह सिर्फ
4: सुकी
2: बोल सकते हैं।
0: एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ताम और आयाका दोनों ने अपने वाक्य में वाताशी वा यानी मैं लगाया, लेकिन हम आपको पिछले पाठों में बता चुके हैं कि अगर संदर्भ स्पष्ट हो तो ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं होती है।
2: यहाँ ताम और आयाका अपनी अपनी पसंद बता रही हैं और इस बात पर जोर दे रही हैं कि उनकी पसंद एक दूसरे से अलग है। जैसे ताम ने कहा
4: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देस,
2: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। यहाँ उसने खास तौर से कहा
4: वाताशी वा।
0: तो अब उच्चारण का अभ्यास करते हैं, सुनिए और दोहराइए।
4: सुकी देस, कोनो नेको गा सुकी देस, वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देस।
2: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें मनपसंद खाने की चीज की बात हो रही है।
5: तबेमोनो वा नानी गा सुकी देस का?
1: सुशी गा सुकी देस।
0: इस बातचीत में पहले पुरुष ने पूछा
5: तबेमोनो वा नानी गा सुकी देस का?
0: खाने में क्या पसंद है?
2: यहाँ
4: तबेमोनो
2: का अर्थ है खाना या खाने की चीज। उसके बाद लगा है विषय सूचक कारक वा।
4: नानी
2: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है क्या। तो
4: नानी गा सुकी देसु का
2: अर्थ है क्या पसंद है।
0: महिला ने उत्तर दिया
1: सुशी गा सुकी देसु,
2: सुशी पसंद है।
0: सुशी एक जापानी व्यंजन है जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है।
2: तो अब ये बातचीत दोबारा सुनिए और उत्तर दोहराइए।
4: तबेमोनो वा नानी गा सुकी देसु का? सुशी गा सुकी देसु।
0: अब वाक्य बनाने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आपको लोकप्रिय जापानी संगीत यानी जे पॉप पसंद है

0: तो ये बात कैसे बताएंगे? जे पॉप को जापानी में कहते हैं
1: जे पॉप।
0: तो कोशिश कीजिए।
2: जे पॉप गा सुकी देस।
3: अब मान लीजिए आपको जापानी चित्र कथाएं पसंद हैं, जिन्हें जापानी भाषा में कहते हैं
1: मांगा।
3: तो अपनी पसंद बताने की कोशिश कीजिए।
4: मांगा गा सुकी देस।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
5: होंतो देसु ने।
1: होंतो
3: है
1: होंतो,
3: यानी सही कहा का लघु रूप।
1: होंतो देसु ने
3: का भी मतलब है सही कहा। इस वाक्य का इस्तेमाल किसी के विचार या राय पर सहमति दिखाने के लिए किया जाता है।
0: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
1: होंतो देसु ने।
3: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: कवाई, मिन्ना गोहान ओ तबेते इमास।
6: होंतो नी कवाई ने। ओइदे ओइदे। वाताशी वा कोनो को गा सुकी।
5: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देस।
7: नेको काफे त्ते रिलैक्स देकिरु यो ने।
5: होंतो देसु ने।
8: バイクと一緒にポップカルチャ
0: ー。अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बताएंगे जापान में तरह तरह के दिलचस्प कैफे के बारे में।
3: जापान में ऐसे बहुत सारे कैफे बन गए हैं जहां केवल खाना पीना ही मुख्य आकर्षण नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण है कैट कैफे, जिसका आज के पाठ में जिक्र है।
0: जिन लोगों को उल्लू या खरगोश पसंद हैं, वे उल्लू या खरगोश कैफे में जा सकते हैं। आपकी जापानी भाषा बहुत अच्छी ना भी हो तो भी आप ऐसी जगह नए दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि वहां आए सारे ग्राहकों की रुचि एक जैसी होती है।
3: मेड कैफे थोड़े अलग होते हैं। वहां खाना परोसने वाली लड़कियां फ्रेंच मेड जैसे कपड़े पहनती हैं और ग्राहकों को मालिक कहकर संबोधित करती हैं।
0: इसके अलावा जापान में आशी यू कैफे भी हैं, जहां आप गर्म पानी में पैर डालकर बैठ सकते हैं। प्लैनेटेरियम यानी तारामंडल कैफे भी हैं, जहां आप चाय पीते हुए सितारों की दुनिया में खो सकते हैं।
3: इसके अलावा एनीमे और गेम्स पर आधारित कैफे तो हैं ही।
0: तो आप भी जापान में अपना मनपसंद कैफे जरूर ढूंढिएगा।
3: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में अपनी नापसंद बताना सीखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ नए हमलों को मनसूख करने के ऐलान के बावजूद ईरान सख्त गिर मौकिफ पर कायम है। ट्रंप मुबैना तौर पर इस हफ्ते के आखिर में एक बड़ा हमला करने का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह शराइत के साथ इसे मनसूख करने पर तैयार हैं। अमरीकी सदर ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान और मशरक वस्ता के दीगर ममालिक ने अमरीका से कहा है कि वो किसी भी ऐसे हमले को रोक दे जो माहदे पर इतफाक के दायरा कार में हो। इस माहदे में अबनाए हुरमस को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान से लाहक जौहरी खतरे का खात्मा शामिल था। ट्रंप ने लिखा कि दरख्वास्त की बुनियाद पर उन्होंने हमला मनसूख करने पर रजामंदी जाहिर की, इस शर्त पर कि वो तेजी से डील कर सकें। ईरान के सरकारी मीडिया ने इतवार के रोज एक आला ईरानी दिफाई अहलकार के हवाले से कहा कि मुल्क दुश्मन के हालिया बयानात को एक हकीकी और काबिल एतबार खतरे के तौर पर देखता है, चाहे इसे नफसियाती हरबों के तौर पर पेश किया जाए। एहलकार ने मुबैना तौर पर यह भी कहा कि ईरान ना तो चौकसी छोड़ेगा ना ही गैर फाल रहेगा। एहलकार ने मजीद कहा कि ईरान अपनी फौजी तैयारी में इजाफा और दिफाई सलाहियत को मजबूत करेगा। इंडोनेशिया के जजीरे जावा के शिमाल मशरकी पानियों में एक कश्ती में आग लग गई। तलाश और बचाव की मुल्की एजेंसी का कहना है कि इतवार की शाम 4 बजे तक 5 अफराद हलाक हो चुके थे और 41 दीगर लापता थे। एजेंसी का कहना है कि आग दिन के अवाइल में उस वक्त लगी जब कश्ती मशरकी जावा सूबे के मादुरा जजीरे के पास से गुजर रही थी। एजेंसी का कहना है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त कश्ती 271 अफराद को मशरकी जावा के सूरा बाया से जनूबी सलावेसी सूबे के मकासर लेकर जा रही थी। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। जापान के शिमाली शहर आओमोरी में मौसम गर्मा के मशहूर तरीन मुल्की त्योहारों में से एक के आगाज पर शानदार फ्लोट्स की परेड हुई है। त्योहार में सालाना तकरीबन 10 लाख अफराद शरीक होते हैं। इसकी सबसे बड़ी कशिश नेबुता कहलाने वाले दियोहेकल फ्लोट से वो तारीखी जंगजुओं, अफसानवी शख्सियात और दीगर मौजूआत की अक्कासी करते हैं। इतवार को इस साल के त्योहार के पहले दिन शाम 7 बजे 16 फ्लोट से जुलूस शुरू हुआ। हर फ्लोट की ऊंचाई तकरीबन 5 मीटर थी। शुरका ढोल और बांसुरी बजाते हुए 3 किलोमीटर से ज्यादा तवील रास्ते पर चले पुरजोश रक्कासों के एक ग्रुप ने माहौल को मजीद पुर रौनक बनाने में मदद दी। 40 के पेटे की एक तमाशाई खातून ने कहा कि वो पहली बार त्योहार देखने पर बहुत पुरजोश हैं। उन्होंने बताया कि वो नेबुता कारीगरों की साल भर की कोशिशों में शामिल जोश व खरोश महसूस करती हैं जो फ्लोट्स बनाने के लिए की जाती हैं। त्यौहार जुमे तक जारी रहेगा। शायकीन आखिरी दिन आतिशबाजी और बहरी फ्लोट्स का जुलूस बयक वक्त देख सकते हैं।
1: और अब आज की चंद अहम खबरों की शह सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। जापान की वजीर खजाना का कहना है कि वजारत ने अमरीकी वजारत खजाना के साथ मिलकर जापानी येन खरीदने के लिए गुज़श्ता हफ्ते करेंसी मंडी में मुदाखलत की थी। ख्याल किया जाता है कि गुज़श्ता हफ्ते न्यूयॉर्क की तिजारत में डॉलर के मुकाबले में जापानी करेंसी में 5 येन के तेजी से इजाफे के पीछे यही मुश्तरका मुदाखलत कारफरमा है। जनूब मगरबी प्रीफेक्चर कुमामोतो में पीर को दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ये प्रीफेक्चर गुज़श्ता हफ्ते 7.1 मैग्नीट्यूड के जलजले से मुतासिर हुआ था। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ नए हमलों को मनसूख करने के ऐलान के बावजूद तेहरान सख्त गिर मौकफ पर कायम है। एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 3 अगस्त सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान के वित्त मंत्री का कहना है कि मंत्रालय ने अमरीकी वित्त मंत्रालय के समन्वय से पिछले सप्ताह जापानी येन खरीदने के लिए मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया। माना जा रहा है कि इस संयुक्त हस्तक्षेप के कारण ही पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में डॉलर के मुकाबले जापानी मुद्रा में 5 येन की तीव्र वृद्धि हुई। इस उछाल ने येन को लगभग 2.5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। गौरतलब है कि येन 40 वर्षों के न्यूनतम स्तर के करीब पहुंच गया था। वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी ने सोमवार को एक वक्तव्य जारी कर संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की। बाद में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि ये कार्रवाई पिछले साल सितंबर में जापान और अमेरिका के वित्त मंत्रियों के संयुक्त बयान के अनुरूप थी। कातायामा ने कहा कि जापान का वित्त मंत्रालय मौजूदा स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है और अमरीकी वित्त मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है। भविष्य में समन्वित हस्तक्षेप करने में हमें कोई संकोच नहीं होगा। कातायामा ने आगे कहा कि भविष्य में जापान अपने अमरीकी बंधपत्रों को गिरवी रखकर हस्तक्षेप के लिए आवश्यक डॉलर उधार लेने हेतु फेडरल रिजर्व की सुविधा का उपयोग करने की योजना बना रहा है। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका मंत्रालय आगे किसी भी संयुक्त हस्तक्षेप में भाग लेने से नहीं हिचकिचाएगा। बेसेंट ने कहा कि येन के भारी अवमूल्यन को ठीक करने के लिए जापान द्वारा बाजार में अपनाए गए ठोस मौद्रिक उपायों का अमरीकी वित्त मंत्रालय दृढ़ता से समर्थन करता है। 2011 के बाद ये जापान और अमेरिका का पहला संयुक्त मुद्रा हस्तक्षेप था। उस समय पूर्वोत्तर जापान में आए महाभूकंप और सुनामी के बाद येन के मूल्य में उछाल आने के चलते अधिकारियों ने येन को बेच दिया था। हालांकि 1998 के बाद येन को सहारा देने के लिए ये पहला संयुक्त हस्तक्षेप है जब जापान के कुछ बैंक डूब गए थे। जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो में सोमवार को पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह इस क्षेत्र में 7.1 की तीव्रता का भूकंप आया था। कुमामोतो शहर में दोपहर 2:24 पर अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार कुमामोतो प्रीफेक्चर में इससे पहले का उच्चतम तापमान 39.6 डिग्री था, जो अगस्त 2013 में दर्ज किया गया था। एजेंसी लोगों से तापघात से बचाव के लिए सावधानी बरतने का आग्रह कर रही है, जिसमें घर के बाहर साफ सफाई करने से बचना और दिन के दौरान ठंडी जगह पर रहना शामिल है। भूकंपीय गतिविधि में वृद्धि के बीच मौसम विज्ञान एजेंसी लोगों से मंगलवार तक जापान के भूकंप मापी पैमाने पर 7 तक की तीव्रता वाले भूकंपों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह कर रही है। कुमामोतो के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि भूकंप के बाद से सोमवार सुबह 7:30 बजे तक प्रीफेक्चर में आपदा से संबंधित 38 मौतें हो चुकी थीं। 4,600 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 181 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। प्रीफेक्चर में 8,500 से अधिक लोगों को आपात आश्रयों में स्थानांतरित किया गया है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक बड़ा हमला करने की योजना रद्द करने की घोषणा की है, जिसके बावजूद ईरान का कड़ा रुख बरकरार है। खबरों के मुताबिक ट्रंप सप्ताहांत में एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब उनका कहना है कि वे कुछ शर्तों के साथ इसे रद्द करने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान और पश्चिम एशिया के अन्य देशों ने अमेरिका से अनुरोध किया कि वो हमला रद्द कर दे, क्योंकि समझौते के खाके पर सहमति हो गई है। समझौते में होर्मुज जलडमरु मध्य को तुरंत और पूरी तरह से खोलने तथा ईरान की ओर से उत्पन्न परमाणु खतरे को समाप्त करने की शर्त रखी गई है। ट्रंप ने लिखा कि अनुरोध के आधार पर वे जल्द से जल्द समझौता होने की स्थिति में हमला रद्द करने पर सहमत हुए। ईरान के सरकारी मीडिया ने रविवार को ईरान के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के हवाले से कहा कि दुश्मन के हालिया बयान भले ही मनोवैज्ञानिक दांव पेच हैं, लेकिन ईरान उन्हें वास्तविक और गंभीर खतरा मानता है। अधिकारी ने कथित तौर पर यह भी कहा कि ईरान लापरवाही नहीं बरतेगा और न ही चुपचाप बैठा रहेगा, बल्कि वो अपनी सैन्य तत्परता बढ़ाते हुए प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करेगा। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पूर्वोत्तरी जलक्षेत्र में एक नौका में आग लगने की खबर है। इंडोनेशिया की खोज एवं बचाव एजेंसी के अनुसार रविवार शाम 4 बजे तक 5 लोगों की मौत हो चुकी थी और 41 अन्य लापता थे। एजेंसी का कहना है कि आग रविवार को उस समय लगी जब ये नौका पूर्वी जावा प्रांत के मादुरा द्वीप के निकट से गुजर रही थी। एजेंसी के अनुसार ये नौका पूर्वी जावा के सुराबाया से साउथ सुलावेसी प्रांत के मकासर जा रही थी और उस पर 271 लोग सवार थे। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। जापान के सुप्रसिद्ध ग्रीष्मकालीन उत्सवों में से एक नेबुता महोत्सव की शुरुआत हो गई है। नेबुता महोत्सव में जापान के उत्तरी शहर आओमोरी में भव्य झांकियों की परेड निकाली जाती है। इस महोत्सव में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख दर्शक आते हैं। इसका मुख्य आकर्षण नेबुता नामक विशाल झांकियां हैं। इनमें ऐतिहासिक योद्धाओं, पौराणिक पात्रों और अन्य विषयों को दर्शाया जाता है। इस वर्ष के उत्सव के पहले दिन रविवार शाम 7 बजे 16 झांकियों ने परेड शुरू की, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई लगभग 5 मीटर थी। ये झांकियां ढोल और बांसुरी की धुन पर करीब 3 किलोमीटर तक चलीं। उत्साही नर्तकों की भीड़ ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। 40 वर्ष से अधिक आयु की एक महिला ने कहा कि वो पहली बार इस उत्सव को देखकर बेहद उत्साहित है। उसने कहा कि उसने झांकियों के निर्माण में नेबुता शिल्पकारों द्वारा किए गए साल भर के प्रयासों में निहित उत्साह को महसूस किया। ये उत्सव शुक्रवार तक चलेगा। अंतिम दिन दर्शक आतिशबाजी और समुद्री झांकियों का जुलूस एक साथ देख सकते हैं।
0: इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: NHK World जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 23वें पाठ में अपनी पसंद बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो होक्काइडो घूमकर टोक्यो वापस आ चुकी है। टोक्यो में वो अपने दोस्तों आयाका और माइक के साथ एक कैट कैफे में आई है। माइक अमरीकी है और जापान की पॉप संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानता है।
0: कैट कैफे ऐसी दुकानें होती हैं जहां आप चाय या कॉफी का आनंद लेते हुए बिल्लियों के साथ खेल सकते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं 23वें पाठ की बातचीत।
2: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले ताम ने बिल्लियों को देखते हुए कहा,
2: कवाई,
1: कितनी प्यारी हैं।
2: मीना गोहान ओ तबेते इमास,
1: सब खाना खा रही हैं।
0: फिर आयाका बोली,
2: होंतो नी कवाई ने,
1: सचमुच प्यारी हैं।
0: उसके बाद आयाका ने बिल्लियों को आवाज लगाई,
2: ओइदे ओइदे,
1: इधर आओ इधर आओ।
0: आयाका ने अपने पास आई बिल्ली को पुचकारते हुए कहा,
2: वाताशी वा कोनोको गा सुकी,
1: मुझे ये वाली पसंद है।
0: फिर ताम ने दूसरी बिल्ली को सहलाते हुए कहा,
2: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देसु,
1: मुझे ये बिल्ली पसंद है।
0: माइक भी माहौल का आनंद ले रहा था। वो बोला,
3: नेको कैफे ते रिलैक्स देकिरियो ने,
0: कैट कैफे आकर बहुत सुकून मिलता है ना।
1: तब ताम ने जवाब दिया,
2: होंतो देसु ने,
1: सही कहा।
0: कैट कैफे में आमतौर पर अलग अलग तरह की बिल्लियां होती हैं। आप भी उनमें से अपनी मनपसंद बिल्ली के साथ खेल सकते हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देसु,
1: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। ये वाक्य याद करके आप अपनी पसंद बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
4: वाताशी
0: का अर्थ है मैं और उसके बाद लगा है वा, जो विषय सूचक कारक है। उसके बाद आया है
4: नेको,

0: जाता है उसके नाम के बाद कारक ओ नहीं गा लगाया जाता है।
1: अगर हम आयाका की पंक्ति पर ध्यान दें तो उसने भी कहा था वाताशी वा कोनो को गा सुकी, जिसका अर्थ है मुझे ये वाली पसंद है।
0: करीबी मित्र से बात करते समय आप अंत का
2: डेस
0: छोड़ सकते हैं और
2: स्की डेस
0: की जगह सिर्फ
2: स्की
0: बोल सकते हैं।
1: एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ताम और आयाका दोनों ने अपने वाक्य में वाताशिवा यानी मैं लगाया, लेकिन हम आपको पिछले पाठों में बता चुके हैं कि अगर संदर्भ स्पष्ट हो तो ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं होती है।
0: यहाँ ताम और आयाका अपनी अपनी पसंद बता रही हैं और इस बात पर जोर दे रही हैं कि उनकी पसंद एक दूसरे से अलग है। जैसे ताम ने कहा
2: वाताशी वा कोनो नेको गा स्की देस,
0: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। यहाँ उसने खास तौर से कहा
2: वाताशी वा।
1: तो अब उच्चारण का अभ्यास करते हैं, सुनिए और दोहराइए।
2: स्की देस कोनो नेको गा स्की देस वाताशी वा कोनो नेको गा स्की देस।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें मनपसंद खाने की चीज की बात हो रही है।
3: तबेमोनो वा नानी गा स्की देस का?
4: सुशी गा स्की देस।
1: इस बातचीत में पहले पुरुष ने पूछा
3: तबेमोनो वा नानी गा स्की देस का,
1: खाने में क्या पसंद है।
0: यहाँ
2: तबेमोनो
0: का अर्थ है खाना या खाने की चीज। उसके बाद लगा है विषय सूचक कारक वा।
2: नानी
0: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है क्या, तो
2: नानी गा स्की देस
0: का अर्थ है क्या पसंद है।
1: महिला ने उत्तर दिया
4: सुशी गा स्की देस,
0: सुशी पसंद है।
1: सुशी एक जापानी व्यंजन है जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है।
0: तो अब ये बातचीत दोबारा सुनिए और उत्तर दोहराइए।
2: तबेमोनो वा नानी गा स्की देस का? सुशी गा स्की देस।
1: अब वाक्य बनाने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आपको लोकप्रिय जापानी संगीत यानी जे पॉप पसंद है, तो ये बात कैसे बताएंगे? जे पॉप को जापानी में कहते हैं
2: जे पॉप।
1: तो कोशिश कीजिए
4: जे पॉप गा स्की देस।
0: अब मान लीजिए आपको जापानी चित्र कथाएं पसंद हैं, जिन्हें जापानी भाषा में कहते हैं
2: मांगा।
0: तो अपनी पसंद बताने की कोशिश कीजिए
3: मांगा गा स्की देस।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
4: होंतो देसु ने।
2: होंतो
0: है
2: होंतो,
0: यानी सही कहा का लघु रूप।
2: होंतो देसु ने
0: का भी मतलब है सही कहा। इस वाक्य का इस्तेमाल किसी के विचार या राय पर सहमति दिखाने के लिए किया जाता है।
1: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
2: होंतो देसु ने।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: कवाई मिन्ना गोहान ओ तबेते इमास।
6: होंतो नी कवाई ने। ओइदे ओइदे। वाताशी वा कोनो को गा स्की।
7: वाताशी वा कोनो नेको गा स्की देस।
8: नेको काफे त्ते रिलैक्स देकिरु यो ने।
7: होंतो देसु ने।
9: マイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बताएंगे जापान में तरह तरह के दिलचस्प कैफे के बारे में।
0: जापान में ऐसे बहुत सारे कैफे बन गए हैं जहां केवल खाना पीना ही मुख्य आकर्षण नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण है कैट कैफे, जिसका आज के पाठ में जिक्र है।

0: जिन लोगों को उल्लू या खरगोश पसंद हैं, वे उल्लू या खरगोश कैफे में जा सकते हैं। आपकी जापानी भाषा बहुत अच्छी ना भी हो तो भी आप ऐसी जगह नए दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि वहां आए सारे ग्राहकों की रुचि एक जैसी होती है।
1: मेड कैफे थोड़े अलग होते हैं। वहां खाना परोसने वाली लड़कियां फ्रेंच मेड जैसे कपड़े पहनती हैं और ग्राहकों को मालिक कहकर संबोधित करती हैं।
0: इसके अलावा जापान में आशी यू कैफे भी हैं, जहां आप गर्म पानी में पैर डालकर बैठ सकते हैं। प्लेनेटेरियम यानी तारामंडल कैफे भी हैं, जहां आप चाय पीते हुए सितारों की दुनिया में खो सकते हैं।
1: इसके अलावा एनिमे और गेम्स पर आधारित कैफे तो हैं ही,
0: तो आप भी जापान में अपना मनपसंद कैफे जरूर ढूंढिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में अपनी नापसंद बताना सीखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ नए हमलों को मनसूख करने के ऐलान के बावजूद ईरान सख्त गिर मौकिफ पर कायम है। ट्रंप मुबैना तौर पर इस हफ्ते के आखिर में एक बड़ा हमला करने का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह शराइत के साथ इसे मनसूख करने पर तैयार हैं। अमरीकी सदर ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान और मशरक वुस्ता के दीगर ममालिक ने अमरीका से कहा है कि वो किसी भी ऐसे हमले को रोक दे जो माहदे पर इतफाक के दायरे कार में हो। इस माहदे में अबनाए हुरमस को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान से लाहक जौहरी खतरे का खात्मा शामिल था। ट्रंप ने लिखा कि दरख्वास्त की बुनियाद पर उन्होंने हमला मनसूख करने पर रजामंदी जाहिर की, इस शर्त पर कि वो तेजी से डील कर सकें। ईरान के सरकारी मीडिया ने इतवार के रोज एक आला ईरानी दिफाई अहलकार के हवाले से कहा कि मुल्क दुश्मन के हालिया बयानात को एक हकीकी और काबिल एतबार खतरे के तौर पर देखता है, चाहे इसे नफसियाती हरबों के तौर पर पेश किया जाए। एहलकार ने मुबैना तौर पर यह भी कहा कि ईरान ना तो चौकसी छोड़ेगा ना ही गैर फाल रहेगा। एहलकार ने मजीद कहा कि ईरान अपनी फौजी तैयारी में इजाफा और दिफाई सलाहियत को मजबूत करेगा। इंडोनेशिया के जजीरे जावा के शिमाल मशरकी पानियों में एक कश्ती में आग लग गई। तलाश और बचाव की मुल्की एजेंसी का कहना है कि इतवार की शाम 4 बजे तक 5 अफराद हलाक हो चुके थे और 41 दीगर लापता थे। एजेंसी का कहना है कि आग दिन के अवाइल में उस वक्त लगी जब कश्ती मशरकी जावा सूबे के मादुरा जजीरे के पास से गुजर रही थी। एजेंसी का कहना है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त कश्ती 271 अफराद को मशरकी जावा के सूरा बाया से जनूबी सलावेसी सूबे के मकासर लेकर जा रही थी। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। जापान के शिमाली शहर आओमोरी में मौसम गर्मा के मशहूर तरीन मुल्की त्योहारों में से एक के आगाज पर शानदार फ्लोट्स की परेड हुई है। त्योहार में सालाना तकरीबन 10 लाख अफराद शरीक होते हैं। इसकी सबसे बड़ी कशिश नेबुता कहलाने वाले दियोहेकल फ्लोट से वो तारीखी जंगजुओं, अफसानवी शख्सियात और दीगर मौजूदात की अक्कासी करते हैं। इतवार को इस साल के त्योहार के पहले दिन शाम 7 बजे 16 फ्लोट से जुलूस शुरू हुआ। हर फ्लोट की ऊंचाई तकरीबन 5 मीटर थी। शुरका ढोल और बांसुरी बजाते हुए 3 किलोमीटर से ज्यादा तवील रास्ते पर चले पुरजोश रक्कासों के एक ग्रुप ने माहौल को मजीद पुर रौनक बनाने में मदद दी। 40 के पेटे की एक तमाशाई खातून ने कहा कि वो पहली बार त्योहार देखने पर बहुत पुरजोश हैं। उन्होंने बताया कि वो नेबुता कारीगरों की साल भर की कोशिशों में शामिल जोश व खरोश महसूस करती हैं जो फ्लोट्स बनाने के लिए की जाती हैं। त्यौहार जुमे तक जारी रहेगा। शायकीन आखिरी दिन आतिशबाजी और बहरी फ्लोट्स का जुलूस बयक वक्त देख सकते हैं।
1: और अब आज की चंद अहम खबरों की शह सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए।